0: 超过一块钱生意啊，规矩都不超过一块钱，这个那块钱生意就差十多块钱，然后做的嘛，然后我是听一块钱。
1: 那也是多了，我们就差不多了嘛，那些，我也慢慢的比以前比较的流畅一点，真是比较多了。一进门的时候，我就说是，我也是多了，差不多了嘛。过来的看到我那毕业，我也是多了，差不多了嘛。就是，我是这里的，反正是这里的，比较多。हम तो घर में तो ध्यान नहीं आप लोग भी तो हम तो होते हैं सब और ये चीज़ जैसे कि लोग इतने लेकिन घरी बना भी है कि नहीं है ना

0: राज्य गतिविधि गर्दा गैर कानूनी वा वित्तीय अनुशासन विरुद्धको निन्दनीय कार्य हो।
1: वित्तीय संस्था रेडियो एवं सहकारीमा जनहितमा चाहिने सन्देश

0: युद्धसेन छापन पर बसाई हानिकारक नहीं रहा और फिर ये भी सबका दुर्चार लंका चंद्रमा जा रहे थे।
1: विश्वास मंत्रों में सही जानकारी पाई गया और नगर उपचार केंद्र का नवारा कर पता बना गया। आधिकारिक इसमें बैंक नेपाल डाक गुवाहाटी में जाकर आवश्यक जानकारी ले सकते हैं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै वित्तीय पूर्णा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वदंश अनुसन्धान केन्द्र सङ्घको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्रहरूका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत हुँदै

0: स्वास्थ्य कार्यालय पूर्णिया से चंपित मचारी संदेश।
1: नमस्कार, मेरा नाम मधुसर सिंह है। वास्तविक नगर पालिका वालोपुरिया तीन सहयोगी उद्योग भारत तथा राष्ट्रीय स्नाता दूसरे किसियों का अवसर मिलता हम प्रगति सहयोगी उद्योग वाला औषधि उत्साह गर्ने गर्छौ।

0: बसी सदर टटकर लगन चकोईना अनुहार की कामिया हो पहाय में ध्यान दी ने हस्तु मसे दे लड़
1: रफ्तार पका मसे पकर लाग काई साथ पाद दाल गुरियरा आरा मच्छी सिकार ओ फल फूल आयरन युक्त खाना नियमित रूप में खाई
0: जंक फूड कम करी संतुलित खाना खाना रोजी स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्य का आधार हो रेडियो गुरबाबा एफएम का सहकारी स्वास्थ्य कार्य ने बढ़िया ऐसी जनहित में जारी संदेश।

आज बिहान पूर्वाभा मौसम बुलेटिन मौसम बुलेटिन रेकर्डिङ जयपुर बाबा।

0: किस्ता तिर्नु चाहिँ त सामाघट पर्न हो। तीन लाख ऋण लिन हुँ, तीन लाख से फेर तिर सक्नु अब मन तिर्न पर्न परिवार
1: तीन लाख रुपियाँ ऋण लिएर राखी तीन लाख रुपियाँ फिर्ता कसरी गर्दाखि
0: कर्जा भुक्तानीमा मेरो

Sanyasa Kamash, and this not Maharas by the Basandri of Sandavan Kumar. Thank you for the Pen Bodhiasa, Pandit Kamash, and this Bodhiasa, Satya Kem Razapur. Thank you for the radio, Pati Bodhis and Kumar, Radio Hatimaru, Jati Bound Padika, Bakimasi, Kasan Prasar, Vitibar. हमारे देश का कोई दायित्व मुख्यमंत्री समाचार का शीर्षक में से उठे उठे के चारों में सिले हाथ कट का बांस का दिवाली मतलब कंप्लीट कर दिया निर्भरिक छात्र विषय में प्रभाव अनुमान आधारित प्रभाव कार्य ढांचा बांस करी नगर पालिका में सुझाव प्रदान बना गए रेल इच्छा को अभाव पास राजपुर नगर पालिका से 1200 खरीद लंबिनी उद्योग दर्ता करना स्कूल का निबंधन और पेटिटर नुकाखा जनलत डेढ़ किलो कोठी सहित 3 जना पकड़ाओ।

मंत्री सारा मिश्री ने खास काट कर एक महिला गंभीर हालत में बांटी। आज बिहार करीब 9 बजे उम्र भैंसिंग कला पटना क्रम बास्तरी सात पर साक्षी बढ़ते सुखरानी अहिर खैर गिर फेंकी। वहाँ पूर्व उड़ा सदस्य रामचंद्र अहिर का कोशिंग फेंकी। स्थानीय साधिक राम यादव के अनुसार दिल्ली के चारा मिशी ने भैंसिंग कला चारा पटना क्रम में वहाँ बाम हाथ मिशी में पड़कर बीच भाग से आवक हिस्सा टुकड़ा टुकड़ा होकर निर्मल बा घायल अहिर का हाल नेपाल का स्थित भेजी अंचल अस्पताल में बीरवा गई। परिवार स्रोत के अनुसार वहां का अवस्था अब घटना को तरल वहां गोसिया रामचंद्र अहिर कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र में झारे प्रयोग होना असिन विद्युतीय चारा मिशन चलाइए पर्याप्त सावधानी दिए अपनाइए दुर्घटना का जोखिम उच्चारणा आरोप सचेत आवश्यक देख पड़ा। जलवायु परिवर्तन का कारण वहां के अलग विपदा न्यूनीकरण करना उद्देश्य ने पूर्वानुमान आधारित पूर्व कार्य ढांचा पार्थिव नगर पालिका में बना देगा। कालीमा में भी छठ समूह बनाकर समूह में छलफल देखा। जलवायु परिवर्तन का कारण आवश्यक संभावित विषय कर मध्यम दर गर्दी बैठा आवश्यक क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र समुदाय व स्थान में पूर्व कार्य करना मौसम का कारण बिना सिद्धहर मानव वन्य जंतु बीच विनाश बंदर व्यवस्थापन वन दढ़ेलो अत्यधिक गर्मी के

ग्राम सेतु नगरी तर फल नियन्त्रण गरी आज निर्भयका नीति बनतरार निशाना रोग सेवाजी स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो गुरुबाबा एफएमको सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रत्याशी जनैक मचारी सन्देश।